0: ମହାମାନବ ପ୍ଲାଟୋ କହିଛନ୍ତି, ତିନି ପ୍ରକାରର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରେମୀ, ସମ୍ମାନର ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଲାଭର ପ୍ରେମୀ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସକାଳେ 6ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରି ପ୍ରସାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी रे संवाद सुनिले रिले करे प्रसार कलु आकाशवाणी दिल्ली केंद्र रो आकाशवाणी संबलपुर प्रचार करुछु भक्ति गीतर कार्यक्रम बंदना। कार्यक्रम रो प्रथम भक्ति अर्घ्य शिल्पी बी बुद्ध प्रसाद राव एवं दीपशिखा मिश्र। गीतटी को रचना करिसेंती प्रभाकर पाणिग्राही।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक के मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय आदिवासी

0: सदस्यों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
2: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के दो दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
3: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है।

0: भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉक ड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रूपये तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रूपये। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

0: द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपये तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy. Cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16 at the FIFA World Cup after 2-1 victory over Japan in Houston, US. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July, that is tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. We have more from a correspondent.
3: According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in the international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. The ministry said that to address this situation, the temporary regulatory measures introduced on 12th of this month prescribed a temporary limit of 200 liters of high-speed diesel per consumer or vehicle per day at retail outlets and required industrial, institutional and commercial consumers. The measures were aimed at preventing black marketing, hoarding and diversion of fuel while ensuring uninterrupted availability of petrol and diesel to retail consumers. Following a review of the supply situation of petroleum products in the country, the government has concluded that the temporary regulatory measures are no longer required in the public interest. The temporary measures help ensure adequate availability of petrol and diesels across the country while safeguarding the interest of retail consumers. Their withdrawals reflects the improvement in the supply situation and the restoration of normal supply arrangements. Aditya Pratap Singh, Akashwani News, Delhi.
2: West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari has said that the Uniform Civil Code UCC will be implemented in the state. We have more from a correspondent.
4: Chief Minister Shubhendu Adhikari announced in the assembly that a draft proposal of the bill will be presented at the scheduled state

बढ़े झुरी लगी बाबू सुगुरु नाई बाबा अरे जल्ला लालटीन गुटे बाहर जल्ला लालटीन गुटे बाहर काबा है जीवू।

मुड़ीते काहे लाजी कांदला बो सुक्रु तार भोंस चुरी कथा सोर पड़ी गला तार भोंस चुरी कथा सोर पड़ी गला मोर

0: ଶେଷ ହେଲା ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 10:30 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲେ କରି ପ୍ରସାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ସରଫିରୋଜି। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इससे के अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और 0 उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन के विकास पर 8000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
3: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा, और इसके अलावा 8000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में, और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। भारत ने

0: अफगानिस्तान के रिहायशी इलाके में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फुटबॉल में फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। दो घंटे तक चले रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें 1-1 से ड्रॉ पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी ते संवाद सुनले रिले करे प्रसार करलो आकाशवाणी दिल्ली केंद्र नु। आपने ट्यून कर आकाशवाणी संबलपुर के सुनुन कार्यक्रम या चीनी सुनुन कतेटा ओडिया कथचित्र गीत कार्यक्रम पहला गीतटा सुनुन कथचित्र अभिलाष गीतटा के गाइछन हेमलता संगीत सजेछन आ गीतटा के लिखिछन सरोज पटनायक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। ये आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश और विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भाग लेने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद श्री चौहान पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी संघर्ष विराम के बाद हो रही है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू के बलिदान का स्मरण कर किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मोरक्को, ब्राजील और पराग्वे फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। आज खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी थे संवाद सुन ले, रिले करी सुना लो आकाशवाणी।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
0: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: संजय मार्केंडे जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान, ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, इस सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम है।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
0: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
2: जी,
0: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
2: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
0: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
2: जी श्रोताओं, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
0: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
0: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
2: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
0: जी जी।
2: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
0: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
2: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
0: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
2: जी,
0: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
2: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
0: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओं, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है, वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का

0: उपयोग कर रहे होते
1: जी
0: हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
1: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए, वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
0: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं।
1: जी
0: प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
1: जी तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात यह है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
0: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
1: जी
0: तो श्रोताओ, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800-44-0559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप सोशल मीडिया पर भी, यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, सीखो।
1: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
0: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
2: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।
3: खोदेंगे भाई, खोदेंगे, हम सब मिलकर।

0: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
1: खो देंगे कोई खो देंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे
2: हार। बस अब थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
3: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करें खत्म।
2: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
1: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
4: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, काओ काओ काओ।
5: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन? कू कू।
6: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
7: मेरा भी कुछ यही हाल है।
4: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो। काम काम काम।
6: क्या क्या क्या?
4: पूजा सब तक कोयल गाए,
6: नीचा
4: सब तक सांप सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना। काम
2: हाँ हाँ, यही करो तुम दोनों।
6: जो आज्ञा महाराज।
5: दम लगा के कू।
7: आयशा।
5: दम लगा के कू।
7: आयशा।
4: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? आ, करता होगा पड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। काम काम काम काम काम काम काम। लो ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा। काम काम काम। अरे पपीहे, ऐसे क्यों बैठा है भैये? सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है? काम काम काम।
7: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
4: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
7: ताल खोदने में, इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको? अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
4: काँ, काँ, काँ।
0: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने

0: やばい。パピーハナピエトジャバイ。
1: ガオガオガオ、あれ、イスネートバスラッヒパカルリ。
2: バウバウバウ、あれ、ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे, ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भाव भाव, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
1: गाँव गाँव गाँव, कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। गाँव गाँव, शेर महाराज अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: हाँ हाँ, इसकी यही यही सजा हो।
4: हाँ हाँ, इसको यही दंड दो।
5: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
1: गाँ, गाँ, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। गाँ।
6: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं, भयानक गर्मी है ना?
7: भाई मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
1: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
7: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
6: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब।
1: खाओ, खाओ, खाओ।
6: तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
1: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
6: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
7: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
1: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है?
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी हैं के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।
0: चलो
3: पिए दूजा पानी।

0: बिन पानी।
1: क्या ये मर गया?
2: क्या पता,
1: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
2: हाँ, चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
1: हाँ ये ठीक रहेगा।
2: पपी है, अरे देखो तो हम आए हैं तुम्हें लेने। माहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
3: पानी,
2: अरे
1: पपी है भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: सुनिले NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଘଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है, जो मिट्टी और उससे आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
1: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में

0: स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की थी। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर वायरल उस फर्जी नोटिस का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेच रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कॉरपोरेशन ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जर्मनी विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी रे संवाद सुनिले रिले करी सुनाइलु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र रो आपण माने कार्यक्रम शुणुचंती आकाशवाणी संबलपुर केन्द्ररो। श्रोता बंधु, आज दिन गोटाए बाजी 20 मिनिट्रे घर संसारर लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो सखीरे विषयवस्तुटी रहिछि सुखी परिवार आम हातरे। एही कार्यक्रमरे जोगाजोग करिवार नंबर 2टी हेला 0663241123 एवं अन्यटी हेला 0663241140। ताहले कार्यक्रमरे निश्चय जोग देबे। विषयवस्तुटी आउ थरे कहि रखुछि सुखी परिवार आम हातरे। ताहले हेलो सखी आपणक अपेक्षारे आकाशवाणी संबलपुर आरंभ करुछु संबलपुरी गीतार कार्यक्रम। कंठशिल्पी चंद्रभानु भोई एवं पार्वती जेना, गीत रचना परशुराम शतपथी। प्रथमे शिल्पी चंद्रभानु भोईंक कंठरे शुणन्तु एही गीतटी, गीतिकार परशुराम शतपथी।

0: आकाशवाणी संबलपुर। हेलो सखी कार्यक्रम।
1: हेलो नमस्ते।
0: नमस्ते सर, किए कहुथले?
1: मैं अर्जुन, मेरे को पूर्वतीपुर जिला बरगढ़।
0: अर्जुन भाई, आपण को आज कार्यक्रम को खूब सम्मान सहित स्वागत जनाऊँ। आज विषय वस्तु रही सुखी परिवार आम हाथ में, आपण ए संपर्क कौन कहिबे?
1: हाँ, तो भल कथा रखी जे बाकी ठीक अच्छे। सुखी पर सुखी परिवार भले कि रही मानी
0: आज्ञा
1: बेसी जदि छुआ पिला है ये भले असुविधा है।
0: आज्ञा आज्ञा, ताहले आउ कौन करिबा कथा आमे परिवार रे खुशी एवं शांति रे रहिबा पई?
1: हाँ, परिवार जते जण थिबा सब एक एगिरी थिबार कथा, एक एगिरी काम कोबार करबार कथा।
0: आज्ञा,
1: सबे शांति रहबार कथा,
0: परस्पर को बुझीबा भी कथा।
1: आज्ञा, पिला छुआ रो दायित्व माँ बापार है।
0: आज्ञा,
1: ते सब जिन ध्यान देकर रखले ठीक है। आज्ञा,
0: निश्चित भाव रे।
1: तीन मास पर जे लागी मोर फोन नहीं लागथे। आज्ञा, क्या करमा?
0: आज्ञा, कौन करिबा, बहुत आड़ फोन आसुथाए सेति पई लागेनी, किंतु देखंतु लागिछि आमे आज कथा होचंती। केते बढ़िया लगुच्छे आपण आज फोन करिछंती, आपण को फोन लागिछि एवं विषय वस्तु आज बढ़िया रही सुखी परिवार आम हाथ में। ताहले
1: बढ़िया विषय वस्तु रे रखि जे।
0: आज्ञा, आपण भलो छंती?
1: हां भलो छन। देला आपण जे भलो छन के?
0: आज्ञा, घरे सब किए अछंती? सब
1: घरे के हमर बाबर मा मई आ बाबू जोड़ी।
0: अच्छा, बहु किछि कहिबे कि ए विषय रे?
1: মই অলগা থান গৈ ফোন কৰি যাই গোটেই গছল গৈ আছি কি সেই ঘৰে টিকি নি লাগে তো।
0: আজ্ঞা আজ্ঞা,
1: হয়
0: যা হওক, ধন্যবাদ। আপোন মানে ফোন এতে আগ্ৰহৰ সৈতে কৰিছন্তি, ফোন লাগুনি বুলি বাহিৰক আসি কথা হৈছন্তি সেতি পাই।
1: হ্যাঁ, বাহিৰ গৈ যে আধা কিলোমিটাৰ।
0: ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভাই, আপোনাক কাৰ্যক্ৰম তৰফৰ অশেষ ধন্যবাদ জনাওছি সেতি পাই।
1: আজ্ঞা, এ তোমাৰ ষ্টেচন কে কেনে কলে দেখি যে হেবা?
0: আজ্ঞা,
1: তোমাৰ সমলপুর স্টেশন রেডিও স্টেশন কেন কলে দেখি হবা বলি?
0: হ্যাঁ, আপনি আসুন তো সমলপুর স্টেশন দেখি পারিবে।
1: হ্যাঁ জি, কাঁণা কাঁণা লাগছে? আধার কার্ড কাঁণা কাঁণা লাগবা? ডকুমেন্ট পত্র
0: কিছু নাই, আপনি আসুন তো। আমার কার্যক্রম মুখ্য অছন্তি, সেমানকু কহিবে, আপনি আপনি দেখি পারিবে, কিছু অসুবিধা নাই।
1: কে স্টেশন কিনতা নাও জি? কচুরি রোড।
0: আজ্ঞা আজ্ঞা, आकाशवाणी संबलपुर। हेलो सखी कार्यक्रम।
2: नमस्ते।
0: नमस्ते सर, किए कहुथिले? धन्यवाद भाई, आपण फोन करिछंती, आपणको कार्यक्रम को अशेष स्वागत जनाउछि। आजिर विषय वस्तु रहिछि सुखी परिवार आम हाथ में, आपण ए संपर्क रे कोन कहिबे? জীবন তো সেমিতি সুখ দুঃখ লাগিছি, তথাপি আমি চেষ্টা করিবা কেমতি খুশিরে রহিবা, পরস্পরকে বুঝিবা। আউ কোন কহিবে আপন এই বিষয়ে, কেমতি কোন করিবা আমি খুশিরে রহিবা?

0: Washington fulfilled its own obligations, including easing sanctions and releasing Iranian assets. The contrasting statements underline how fragile the diplomatic process remains despite recent efforts to reduce regional tensions. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
1: Three more teams have bowed out of the 2026 FIFA World Cup after the opening round of 32 matches. Morocco, Brazil and Paraguay booked their places in the round of 16 with victories over the Netherlands, Japan and Germany respectively. We have a report.
2: Germany suffered a shock exit after losing to Paraguay 4-3 in a penalty shootout defeat in Boston after the match ended 1-1 following extra time. This marks Germany's first ever penalty shootout loss in the World Cup. With this win, Paraguay advances to the World Cup round of 16. In another match, Morocco defeated the Netherlands 3-2 on the penalties after a dramatic 1-1 draw across 120 minutes in round of 32 clash today. Morocco's Ashraf Hakimi and Neil Elanoi tested Dutch goalkeeper Bart Verbruggen, while Mickey van der Ven posed a world-class save from Moroccan keeper Yassine Bounou. Cody Gakpo scored a brilliant opening goal for the Netherlands after receiving a quick pass from Crescencio Somerville. After a chaotic penalty shootout featuring misses from Quinton Timber and Ashraf Hakimi, Ismail Saibari scored a decisive spot kick to send Morocco through. Earlier, Brazil has entered the round of 16 after a 2-1 victory over Japan in Houston, US. Brazil will next face either the Ivory Coast or Norway on Sunday in East Rutherford, New Jersey in the round of 16. With Neelam's report, this is Jigyasa Pandey for Akashvani News, Delhi.
1: The Intermeteorological Department, IMD, issued an orange-coloured warning for very heavy rainfall over parts of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Maharashtra, coastal Karnataka, Konkan and Goa for the next 2 days. Similar conditions are also expected over parts of Sikkim, Assam, Meghalaya, Kerala and Mahe, Sub-Himalayan West Bengal for the day. IMD said a gradual fall in maximum temperatures by 4 to 5 degrees Celsius is expected over northwest India during the next 3 to 4 days. Meanwhile, the Met Department has forecast heatwave conditions over Delhi, Haryana and Chandigarh today. Benchmark domestic equity indices were trading on a flat note during the afternoon session today. The Sensex was down 63 points to 76,665, while the Nifty dipped 9 points to 23,937 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Eurobank launches UPI-based remittance service from Greece to India. Commerce Minister Piyush Goyal calls it a milestone in India's digital payments expansion. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi and four states. India reaffirms strong support for Financial Action Task Force after Pakistan criticizes grey list monitoring by agency. Uncertainty looms over US and Iran peace negotiations as Tehran rejects US President Trump's claim of meeting in Doha. And Germany knocked out of 2026 FIFA World Cup after facing defeat from Paraguay in a 4-3 penalty shootout. With that, we end the midday news.
3: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. यूरोबैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार उत्तर प्रदेश बिहार मध्य महाराष्ट्र कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया अब समाचार विस्तार से यूरोबैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है यह पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है एक रिपोर्ट
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरोबैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं इससे लेन-देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की

0: सराहना की। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी BLO विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 BLO पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र BLO को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर BLO और BLA2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी BLO जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत INS देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
3: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने के। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सेक्रीफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए

0: उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले दो वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव

0: और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
1: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେଲି କରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ଟିକିଏ ପରେ।

बिक्रे जीवन बंद फिर तने बछा बिक्रे फिर आउंटा पोस्टिंग गेलंग फिर रेडी बन जिकंग दी नंबर रेंगे पोस्टिंग मन जा 1998 3 2001 जाकर जने के फैजाबाद न आकुन हुदन बानर अयोध्या उस दिन फिर आउंटा हुबा किन मन जा नन है 1999 99 कारगिल युद्ध कारगिल युद्ध मन जा उस दिन ने हुसैन राज कम एमे उनती नेत की डाकुआ वर्चा जे तने कारगिल युद्ध के लगा तो एमें तने अगली काला के मेचर ने पहले पहले दिन जे फॉरवर्ड पोस्ट नु राचर आर एन खाली लड़ा गेल चिचार आउ एम रिजर्व पलटन ती इयर तो नेम हुआ के राजकम नाम है बीड़ी बारी जम्मू के चाहानु जेंडा कि तने जेंडा नॉर्थ एरिया नु नेक बानर चिकन नेक बानर जेंडा तने रही आमर सिलीगुड़ी हुन्ने न्यू जलपाईगुड़ी हुन्ने दाने ईसान पठानकोट चाहनु टिके नेक आतली ताने चिकन नेक टाइप हुसैन एमान चिक्काचार रिजर्व पल्टन हिसाब थी आए मौका माकरा दुख राचा हुआ कि हमें जुनून जजबा बढ़िया राचा शरीर भी राचा हुआ कि ताने देश के जीवन प्रति ताने अब पछली हेरना गे हन्नी मल्लारू हुआ कि जदि लड़ा भी मौका रखी रोदने आउ टे बढ़िया लगे रोदने निजर किसान हिसाब थी आउ टे नाम रोशन कमा गे लगन मन राचा हुन तीन तीन नंबर पोस्टिंग कर काम 2001 3 2003 जाकर एमें आउंटा बड़का पोस्टिंग जेनटा कि ताने नौगां सेक्टर जेनटा कि नौगां सेक्टर हुआ कि जम्मू काश्मीर नु खातिर तांगे चाहानु तंगधार आतली आउ उड़ी सेक्टर माझानु राजा तंगधांग सेक्टर ई नौगां सेक्टर हुसैन ताने मिल्टन एतकी क्रॉस बोर्डिंग मना लिया ताने पाकिस्तानी मिल्टन डी तो बहुत बार आलियर हुआ कि ताने ईगल पास अंटा बोली राजा जेनटा ईगल पास नु ताने मिल्टन हर ताने तीन दिन ताने क्रॉस कमा लिया इन्फ्लेशन मना लिया हुआ कि बहुत हुसैन क्यूआरटिन राजा राजकाम 36 मिल्टन हुआ कि मारकान जी तो ये एंगा हुदगे लगान तमें कार्ड हकरा एम यूनिट के एम पल्टन के हकरा जेनटा कि हमें विदेश का लगे लगन मौका हकरा आफ्रिका महादेश नु अंटा कांगो बोली अंटा देश आती आसान 2010 11 नु एम मौका चिक्काचार आउ हुसैन के यूएन मिशन हिसाब थी ताने शांति सेना हिसाब थी केरकान जी पल्टन से पूरा पल्टन केर की उन दिन तेंगो नहीं है 4 नंबर पोस्टिंग केर कान जिकन उन तीन की यू फोर्स जेनरे के 2003 3 4 जाकर राजकन वैष्णो देवी चाहन उनटा रियासी बोली गाथली आसान केर कान जिकन आसान पोस्टिंग बनिकिर फिर उन तीन बार जिकन 2005 2004 3 2006 अमृतसर अमृतसर तो जामा गुठी कुणा गुठार भी आधार जामा देसा ही अमृतसर अंटा ताने नामे सिख धर्म के अंटा ताने बहुत बड़ा ताने हानी मंदिर अंटा थी गोल्डन टेम्पल के नामे नु ताने पूरा वर्ल्ड आई जे तमें हुस्ता संस्कार शांति सिख गुठियार ताने संस्कार आती चप्पल बन नीम जदि दर्शन काम आई कर चप्पल बन न साफा काम रियर पूरा जतन तीयर डेब्बा एकाती मेला तीना एकाती इयर तमें जतन एरिकी ताने संस्कार एरिकी एतकी बढ़िया लगी बहुत बढ़िया ताने जितकी गरीब धनी मानला नाम टिके ताने गरीबी धनी बट टिके बारदार नाम ओडिया गुठियात कि कुणा गुठियात किंतु तमे सन ने बारण माला दिन धनी गुठियारे गरीब आ गरीब गुठियारे मंदिर सन ने धी ताने धरी गनी धरिन मानला अंटार मानलार कना आ उल्ला दर्शन काम कपड़ा ताने हियरचर कपड़े नु आ तमे जेन भक्ति भाव बुला रही पूरा अम्मू के जल के स्थलर जेनता रही हुन्ने पूरा बहुत बढ़िया रही बहुत ताने हमने आती तमे चाहनु अंटा तिली ताने जालियाना बाग जेने से 1919 नु जेन ताने हत्याकांड मानजिक जेनता जनरल डायर काम काचार आदेश तमें आदेश थी मानजिक जमा दरवाजा बंद काम चार चार ही दरवाजे जे मीटिंग चारा लिया उला ताने अंधाधुन ताने गुली चालन काम काचार जेनटा कि ताने नाम है इंडिया स्तर बहुत ताने देश लगान जेन लड़ाई कमाल हू ताने कैच काचार हू बोध आकुंजुटी भी तांगे जीवन भी आती हुए लगान सिख रेजिमेंट के ताने तीन टा चार टा पल्टन ताने हू बन विरोध कमा गया तमें सिख रेजिमेंट सिखला रेजिमेंट पंजाब रेजिमेंट डोगरा जमानु ताने पंजाबी गुठर तमें छुटियाटे राज्य किंतु एमएस तीन उड़ीसा तीन बेसी आर्मी फौज देश लगान हतको एमएस तीन बेसी आतनार तमें आदि लगन जीवन बोध आउ टे ताने देश के लगन बेसी मन जाकर नाम है 6 नंबर पोस्टिंग मजा 2006 3 8 जाकर आसाम ठाकुरबाड़ी जेनटा कि दीमापुर बानर ताने नागालैंड बॉर्डर भी बारिकाई हुसैन केरकाम हुसैन भी ताने नागा बॉर्डर सन मिल्टन तमें भी आउ खतरनाक मिल्टन रानर तमें आकुंजुट भी चारि मणिपुर आकुन भी चारि तो हुदा दी दीमापुर सन ने पोस्टिंग केरकाम जिका उन दिन 2008 3 10 जाकर फिर दिल्ली बुंका हमें बुलावा बुंगा बर्चा आज इन तेंगालकन यूएन मिशन के लगन 2010 थी यूएन मिशन केरकन आफ्रिका महादेश ने जेनटा कि कोंगो देश ने हमें मौका हकर के जा हानि शांति सेना हिसाब थी हम तीन 9 नंबर पोस्टिंग 2001 3 2013 जाकर हैदराबाद एनसीसी नु ट्रेनिंग चिया गेलागन नेताने हुआ कि ट्रेनिंग ट्रेनर राजकन एंगे ताने हानि हथियार के सुमल आर्म्स तार

0: छन छन लागजी नै ए निरोला समय रे कभर टाउ जी दी बसि खुशी गप करियो भारी मजा लागिवो नै किंतु शंख बाबू सेटा तो तृतीय कि चतुर्थ दृश्य रो कथा त प्रथम दृश्य रो से कथा देखै देले ड्रामाटा माने गोंडगळ हि जीवो आ कोन करजंती देखंतु देखंतु एने जम्मा तीनटा बाची आपन निश्चय ऑफिस न कहि पळे आछंती
1: अके
0: बरंग जांतु कहि दे आसीबे तापरे बसि गप करबा हैला नमस्कार आसीबे किंतु प्लीज
1: माने जीपी हौ जाउची नमस्कार
0: नमस्कार ए शंख बाबू शंख बाबू
1: आज्ञा आज्ञा
0: शंख बाबू
1: आज्ञा कोन ती
0: कथा कोनती जे
1: कोत कोत कोत कोत
0: ना
1: नै कोत
0: ना ना
1: अरे
0: नै माने मते लाज मारुची
1: लाज करियर कोन अछि कहुनाती
0: देखुनाती अपन इते सुंदर सुंदर दामीगा प्रेजेंटेशन आनी देलेनी
1: आज्ञा
0: माने पूणी ता ऊपर
1: जम्मा किछि भाबिबे नै मुआनी देबी जित्ती दामिका हेले भी माने साड़ी फाड़ी में अपन जा कहिबे मु निश्चय आनी देबी
0: आनी देबे
1: हां
0: ताले कहिबी
1: को कहुना दे
0: मो पर आगिबे नि तो
1: नै नै कहन तो प्लीज प्लीज प्लीज कहन तो
0: कहिबी शंख बाबू माने मो पई मो पई गटे
1: कोन
0: उकुणी मारी चुन्ना आनी देबे उकुणी मारी चुन्ना उकुणी मारी चूर्ण माने असली ढोलकी मार्का आनी देबे तो
1: आनी
0: देबे जा आपन को पूणी कष्ट देली कोन मो कथा मने रहिला तो उकुणी मारी चूर्ण
1: ढोलकी मार्का मने रहिला आसी आ गया नमस्कार
0: नमस्कार नाया गया खोलकी मारका उकुणी मारी चुन्न ढोलकी मारका आ जादूर मलम खोलकी मारका
2: ये उकुणी मारी चुन्न ढो ढो
0: नाही नाही नाही नाही उकुणी मारी चुन्न नुए जादूर मलम मोर उकुणी हेनी म जादू हेची
2: आपण मोर जादू हेची
0: देह सारा पादरे भी आपण एथे सुंदर पाउजळे आनी देइचंती अथच मु याको पिंदे बाहर को बाहरले लोके मते थट्टा करिवे कहिबे देखो यार पादरे जादू सालु बालु ये पुनी पाउजी पिंदे बाजा बजौची मत लाच लागिबनी
2: किए थट्टा करिवो म किए थट्टा करिवो केही कहि पारिबे नै बुझिलो कि पादरे जादू हला बोली कोन पाउजो पिंदिया को मनना आपण पिंधंतु जदी किए थट्टा कला ना मु ता कथा बुझिबी मु बुझिबी मु भी बॉक्सिंग फॉक्सिंग जानिछि म
0: हां बहुत धन्यवाद मु एथो निश्चय पिंधा देखिबा किए थट्टा करछि
2: ये कथाटा कोन कि माने माने माने आपण बड़ भारी भल लागि जायछि त ये सिला देबी पाउजटा भल लागिला त
0: भल लागिला माने भारी भल लागिला इट इज लवली देबी एथिरे जदि पांचटा घंटी लागि थांता ना आहुरे सुंदर बाजु थांता
2: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल
0: हेले कोन हबो मनटा त सबबेले से जादू रे
2: मार्गलिस जादू को सुंदर स्त्री माने को पादर घाटे हाथ रे काछुटा हे गेले कोन से असुदर हे गेले नो सुंदरी सुंदरी सब बेले सुंदरी जादू और नो जादू आपण पिंधंतु
0: नारू बाबू आपण सतरे भारी रोमांटिक बाहेला परे स्त्री के सेमिति घंटी लगा पाऊ जो किनी देबे जे से ताकु पिंधि रुणु झुणु शब्द करथिबे आपण दूर दूर हे खाली कंपी उठुथिबे किंतु किंतु नारू बाबू
2: हां
0: अपन बेले बेले झरका बटा अंधार केमती छकी छकी अनौ चंदी काई की
2: काई काई नाही ता
0: आपन कर अंधार गुडगुडी की डर अछि की आ
2: अंधार गुडगुडी से पण के
0: मला अंधार गुडगुडी की अपन जान नती
2: ना
0: मो बहु ता ना कोई हमको पिला दिने भारी डरौतिला से कोडे अंधार भितरे लुचि थाए सुविधा देखि हुट की घर भितर को पसी आसे आपन निसे ताकोई डरो चंती आ
2: मु काहर के डरे नाही मु बॉक्सिंग फॉक्सिंग जाने ती मु कहा को डरे नाही गोटाए मुथरे ता मुहटा को एकदम फ्लैट कर दे
0: तारकण मुह थाए से पुरा गोटे गुडगुडी आपन बरंग बेसी अंधार होबा अगरु पळंतु

0: आम पचर लगिच कहीं चुपचाप एथर मठ को जाओ बाबा आउ झमेला करना
1: से मत्ते कहिचंती मु तांगु बाहेबी
0: ओ पूणी काहे कि सेमती झमेला करचो है
1: सटा मु तांगु अल्बर्ट बाहेबी से मत्ते कहिचंती
0: से मत्ते कहिचंती
1: अल्बर्ट कहिचंती
0: मत्ते चल पछरीबा चुपचाप छिड़ा
2: बड़
1: पार्टी
0: सब कथा हम हम जमा 4:30 बाजी सोई थे कौन डाकदेवी कहीं गोटे हल्ला कर
1: मानने
0: शिला देवी भितर ना से नाते गले कड़े याउ गोटा जात्रा बुझिल नारु बाबू याउ गोटा जात्रा शिला देवी ताले कुआडे गल्ले नै
1: मु केमि जानि म
0: तमे जानि ना
1: ना
0: ओहो मु केमि जानिबे
1: हो केमि ते जानिबे हो
0: जात्रा हौची जात्रा नै तमे अल्बत जानिच हेति कहि पका कहउची नहले नै कि थाना रे बंधै देबी बराबर तांका पछर लागिथलो तमको बा हाबा को मना कर देले बोली तमे तांको कुआडे उडै नैच सपा सपा सब कथा मानि जा कहि दउ
1: हेति सेमिति का बाजे कथा मत्ते कहबो नै कहि दउ
0: शिला देवी गले कुआडे नारू बाबू कथा भारी सीरियस मत लगुच अंधार मंदिर गला बेले कई लोक उठे
1: नहीं
0: फेरबे मु कोन तांको आउ सतरे ये चक्षुरे देखिबी
1: तांकर केते मन थिला आमे बलंगीर जिबु सेठी बाबू हनीमून करिबु
0: मोर सबु सारी गला लो नारु बाबू ये मो छाती कोरी हे जाउची मोर हुदा फाटी जाउची मो आउ जमा बंची भी नाही ये जीवन हारी देबी
1: तांको सर तमे एंती
0: ये हारी पी जीवन मोही प्राण नाती बाजे लोकटे ना टिके बुद्धि बाहबी बोली कला हरदम जिदी ये शेष सफे पंका पड़ी हेला रदी ये थर धौ था खा गाऊ था थुमुरी ये मु चाली बन शिला देवी केते सुंदर झील थिले ये केते सुंदर कथा कहुथले केते भल पाउथले ताको किए कोठे नै गलानी तमको टिके कांड माडु नै
1: ओ कोन करिवा को हबो कहुना काहे कि
0: मते टिके शिला देवी को पाखु को नै जा मत टिके तंगा पखु नै जा
1: शंख बाबू
0: मु मुंडा बहरा जमा काम करू नै मु मुंडा काम करू मत पछर छ मत कोन पछर छ
1: चलो चाहले घर मालिक को पाखु को जिबा थाना को जिबा को पड़ी पारे चलो
0: चलो ये हारी बी जीवना

0: गला एटा कोन गोटे दैवी दुर्घटना
1: एथि पाई किंतु कंपनी दाई नुहे
2: सुनिले नाटक कंपनी दाई नुहे रचना गोपाल चंद्र पटनायक प्रयोजना किशोर महांति सहयोगिता बसंत महांति नाटक रे अंशग्रहण करथिबा कलाकार माने हेले नंद बाबू नेत्रानंद मिश्र शंख बाबू सुरेश चंद्र बल नारु षडंगी निरंजन पांडे गंगाधर शरत चंद्र मुलिया शीला देवी ज्योत्नाराणी शतपथी।

0: ଶୁଣିଲେ ଗାନ୍ଧୀଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।
1: नमस्ते दीदी।
2: नमस्ते, खुश रहो।
1: और देवी, तुम तो और जल्दी आने वाली थी, देर कैसे कर ली?
2: हाँ दीदी, वो टीवी पे रामायण का प्रोग्राम आ रहा था।
1: अच्छा अच्छा, तो तुम रामायण देख रही थी?
2: जी दीदी।
1: अच्छा, तो राम ने किससे युद्ध किया?
2: राम का युद्ध रावण से चल रहा था।
1: ओहो, अच्छा अच्छा। और राम ने रावण से युद्ध क्यों, क्या मालूम है?
2: हाँ, जैसे सच्चाई पे जय लाभ करने के लिए राम ने रावण के साथ युद्ध किया।
1: और राम और रावण की लड़ाई किससे हो रही थी? वाणों से हो रही होगी। वाणों से?
2: हाँ, वाणों के साथ हो रही थी।
1: राम ने रावण को किससे मारा?
2: वाणों से मारा,
1: धनुष वाण से मारा।
2: जी,
1: तो राम ने रावण को मारा। तो ये जो वाक्यों में मैंने कहा से, ने, को, के लिए, हाँ, राम का वाण अवश्य ही लक्ष्य भेद करता है।
2: जी
1: हाँ, मैं कुछ वाक्य बोल रही हूँ। सैनिकों में साहस होना चाहिए।
2: हाँ दीदी।
1: हे राम तुम्हारा स्मरण करके, हे राम, हाँ
2: जी,
1: तुम्हारा स्मरण करके हम में वीरता का संचार होता है। तो इन वाक्यों में ने, को, से, के लिए, से, के और का में हे आदि ऐसे चिन्ह हैं जिनके कारण वाक्यों का स्वरूप भिन्न भिन्न है।
2: जी,
1: ये चिन्ह क्या कहलाते हैं मालूम है? पर सर्ग कहलाते हैं या विभक्ति कहलाते
2: हैं। जरा फिर से बता देंगे।
1: ये जो मैंने कहा राम ने रावण को,
2: जो वाक्य के अंदर प्रयोग होते हैं।
1: हाँ
2: जी।
1: ने, को, से, ये सब जो
2: समझ गए
1: तो लगते हैं ना, तो ये वाक्यों के अर्थ को भिन्न भिन्न कर देते हैं। और ये जो चिन्ह लगते हैं इनको हम क्या कहते हैं? परसर्ग या विभक्ति चिन्ह।
2: विभक्ति चिन्ह
1: क्या कहते हैं? इन विभक्तियों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, बता सकती हो देवी?
2: कारक।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। इन विभक्तियों का चिन्ह हम कारक पर करते हैं।
2: जी,
1: तो ये
2: दीदी कारक की परिभाषा क्या है?
1: कारक की परिभाषा बता रही हूँ। बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। तो आज हम कारक के बारे में ही पढ़े।
2: जी
1: अच्छा, तो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम तो जानते हो क्या है?
2: जी दीदी।
1: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध, याद रखना, क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। बता सकती हो?
2: हाँ,
1: कारक।

0: कहते हैं
1: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध हो
0: क्रिया के साथ,
1: क्रिया के साथ,
0: क्रिया के साथ,
1: क्रिया के साथ ज्ञात हो उसे कारक
0: कहलाता है।
1: समझ गए?
0: जैसे मैं उदाहरण दे रही हूँ तुम्हें, राम ने दूध पिया, जिस वाक्य में राम पीना क्रिया का करता है और दूध उसका कर्म है
1: जी,
0: अतः राम कर्ता कारक है और दूध
1: कर्म कारक है।
0: समझी?
1: जी दीदी।
0: और कारक विभक्ति क्या है मालूम है तुम्हें?
1: कारक विभक्ति नहीं दीदी।
0: कारक विभक्ति बता रही हूँ, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से के लिए आदि जो चिन्ह लगते हैं वे चिन्ह कारक विभक्ति कहलाते हैं। मैंने पहले जो कहा तो जो शब्दों में वाक्यों में जो प्रयोग किए थे हमने तो वो सब विभक्ति चिन्ह थे, तो कारक के बाद लगते हैं तो वो कारक विभक्ति है
1: जी। तो ये संज्ञा और सर्वनाम के बाद लगते हैं,
0: हिंदी आगे भी लगते हैं। मैं बता रही हूँ हिंदी में आठ कारक होते हैं,
1: आठ कारक
0: हिंदी में आठ कारक होते हैं, परंतु संबोधन में वही रूप होता है जो कर्ता में।
1: दीदी आठ कारक कौन कौन से हैं?
0: ये कारक को आठ भागों में विभक्त किया गया है। एक है तुम्हारा कर्ता कारक, कर्म, करण और संप्रदान, अपादान, याद रखना, संबोधन, अधिकरण और संबंध
1: जी।
0: समझी? तो कर्ता कारक क्या है बता सकते हो?
1: कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगने वाला?
0: नहीं, क्रिया के कर्ता को प्रकट करने वाला शब्द, क्रिया के कर्ता को प्रकट करने वाला शब्द कर्ता कहलाता है
1: जी।
0: जैसे कृष्ण ने गाया, समझ रही है
1: जी,
0: कृष्ण ने गाया, सोहन जाता है, इन उदाहरणों में गाने वाला कौन है?
1: कृष्ण।
0: कृष्ण और जाने वाला कौन है?
1: सोहन।
0: सोहन। हिंदी में कर्ता कारक का प्रयोग याद रखना
1: जी,
0: हिंदी में कर्ता कारक का प्रयोग ने विभक्ति के सहित और ने विभक्ति के बिना भी होता है। ने विभक्ति के सहित भी होता है,
1: उसके साथ भी होता है, उसके बिना भी होता,
0: उसके बिना भी होता है। जैसे कृष्ण ने विभक्ति सहित है
1: जी,
0: कृष्ण ने गाया
1: हाँ,
0: और तुम्हारा सोहन जाता है और सोहन विभक्ति रहित है, इसमें ने नहीं है,
1: नहीं है,
0: नहीं है
1: जी।
0: तो समझ गई तुम कर्ता कारक किसे कहते हैं
1: जी।
0: और कर्म कारक बता सकते हो किसे कहते हैं?
1: जो
0: क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है,
1: क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है
0: वह कर्म कारक कहलाता है। बताओ कर्म कारक किसे कहते हैं?
1: जो क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक
0: कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है बता सकोगी? इसका विभक्ति चिन्ह है को। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता, जैसे मैं बता रही हूँ देखो, जैसे मोहन ने सांप को मारा
1: जी,
0: लड़की ने पत्र लिखा, मोहन ने सांप को मारा, सांप को मारा,
1: सांप को मतलब प्रयोग हो रहा है
0: हाँ, को लग रहा है, विभक्ति चिन्ह को लग रहा है देखो
1: जी,
0: और लड़की ने पत्र लिखा
1: यहाँ पे नहीं लगता है।
0: नहीं देखो, तो पहले वाक्य में मारने की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? सांप पर पड़ा
1: जी,
0: अतः सांप कर्म कारक है
1: जी
0: हाँ, इसके साथ परसर्ग को लगा है। दूसरे वाक्य में ध्यान दो, परंतु दूसरे वाक्य में लिखने की क्रिया का फल किस पर पड़ा?
1: पत्र पर पड़ा
0: बहुत अच्छे, अतः पत्र कर्म कारक है
1: जी,
0: इसमें कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को नहीं
1: लगा है,
0: याद रखना
1: हाँ।
0: तो कर्म कारक क्या है पता चला तुम्हें
1: जी?
0: अच्छा, अब करण कारक के बारे में चर्चा करें। करण कारक क्या है?
1: करण कारक
0: करता जिस साधन उपाय या हथियार से क्रिया करता है,
1: जिसको इस्तेमाल करके
0: वो काम करता है उसे करण कारक कहते हैं
1: जी। दीदी
0: समझी? करण कारक की विभक्ति क्या है बता सकती हो? करण कारक की विभक्ति से,
1: से जिसमें से लगता हो
0: या द्वारा होती है
1: जी।
0: जैसे एक उदाहरण दो तो।
1: रमेश कलम से लिखता है।
0: बहुत अच्छे, रमेश कलम से लिखता है
1: जी।
0: अच्छा, मोटर द्वारा वहां पहुंचा
1: यहाँ जाने के लिए हाँ, इस्तेमाल हाँ, होता है
0: यहाँ कलम से
1: हाँ,
0: और मोटर
1: द्वारा
0: क्रिया के साधन है
1: जी,
0: क्रिया के साधन है ना
1: हाँ,
0: क्रिया के साधन है, तो ये सब करण कारक हैं जिसे हम इस्तेमाल करते हैं
1: हाँ।

0: और चौथा क्या है?
1: संप्रदान कारक।
0: संप्रदान कारक किसे कहते हैं बता सकती हो?
1: संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया
0: की जाए
1: संप्रदान
0: हाँ जिसके लिए क्रिया की जाए उसको व्यक्त करने वाला शब्द संप्रदान कारक है। संप्रदान का अर्थ ही है देना
1: जी,
0: है ना? हाँ। संप्रदान का अर्थ है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को
1: संप्रदान कारक
0: कहते हैं।
1: जी दीदी।
0: इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए और को भी होगा। और
1: हमने कर्म कारक में इस्तेमाल किया था और इसमें भी होता है
0: को और के लिए। इनके कुछ उदाहरण दे सकती हो?
1: संप्रदान कारक
0: में स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो
1: जी,
0: स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो,
1: यहाँ पे के लिए इस्तेमाल होता
0: के
1: है।
0: लिए गुरु जी
1: प्रदान कारक
0: गुरु जी को फल दो
1: जी,
0: तो यहाँ जो गुरु जी को फल दो स्वास्थ्य के लिए, इन दो वाक्यों में स्वास्थ्य के लिए और गुरु जी को
1: संप्रदान कारक
0: हुए
1: जी।
0: तो अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह शब्द जिससे अलग होने का बोध हो, अपादान हाँ
1: अलग
0: उसे अपादान कारक कहलाता है। बताओ अपादान कारक किसे कहते हैं?
1: जी संज्ञा या सर्वनाम का
0: वह शब्द
1: जिसे अलग होने का बोध हो।
0: तुम्हें उदाहरण देने से समझ आओगी। देखो जैसे पेड़ से फल गिरते हैं, बहुत सहज है, पेड़ से फल गिरते हैं, छात्र घर से विद्यालय जाता है, शीला घोड़े से गिर पड़ी, अलग हो रहे हैं या नहीं? इन उदाहरणों में जैसे देखो पेड़ से घर से और घोड़े से अलग होने का स्पष्ट है
1: जी।
0: अपादान कारक, अपादान का प्रयोग किसी से डरने लजाने, याद रखना हाँ, सिर्फ एक जैसा नहीं होता है, कभी कभी अलग भी हो जाते हैं। अपादान का प्रयोग किसी से डरने लजाने, तुलना करने, गिरने, उठने, उतरने चढ़ने आदि में भी होता है
1: जी।
0: देखो जैसे हम कहेंगे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, लड़की शेर से डरती है
1: जी, जिसमें दो चीज अलग
0: होते हैं, पृथक हो जाते हैं। पहाड़ से झरना निकलता है
1: जी,
0: अंकुर भूमि से बाहर आता है।
1: हाँ दीदी,
0: हाँ समझ
1: गए।
0: अच्छा बहुत अच्छे। अब संबंध कारक किसे कहते हैं बताओ?
1: शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के संबंध से
0: संबंध के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है
1: जी दीदी।
0: इसका विभक्ति चिन्ह क्या है बताओ तो?
1: का के की रारेरी
0: है। जैसे यह घनश्याम का बेटा है
1: जी,
0: यह घनश्याम का बेटा है, याद रखना। यह कमला की गाय है
1: जी,
0: तो इन दोनों वाक्यों में घनश्याम का बेटे के साथ और कमला का गाय से संबंध प्रकट होता है,
1: अतः
0: यह संबंध कारक है
1: जी,
0: है ना
1: दीदी? ये तो बहुत सहज लग रहा है।
0: हाँ बहुत। अधिकरण कारक किसे कहते हैं बता?
1: दीदी अधिकरण कारक तो
0: जिस स्थान पर क्रिया हो उसके सूचक शब्द को अधिकरण कारक कहते हैं,
1: यानी क्रिया का जैसे सूचना देता है।
0: हाँ, जिस स्थान पर क्रिया हो उसके सूचक शब्द को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे लोग उत्सव में इकट्ठे होते हैं
1: जी,
0: हाँ, और मोहन नदी में तैरता है, कमरे में टीवी रखा है
1: जी,
0: भवरा फूलों का
1: सूचना देता है,
0: मंडरा रहा है। हाँ, तो इन वाक्यों में कौन से शब्द अधिकरण कारक हुए बता सकती हो?
1: जैसे मोहन नदी में तैरता है तो नदी में जहाँ
0: विभक्ति चिन्ह होंगे। हाँ, विभक्ति चिन्ह से पहले जो लगता है, विभक्ति चिन्ह से पहले जो लगता है, जैसे उत्सव में, नदी में, हाँ, कमरे में, फूलों पर, कौन से कारक हुए?
1: अधिकरण कारक
0: है। अच्छा, तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या है बता सकती हो? फिर और एक बार बोलो, अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह क्या है? अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह क्या हुए?
1: हाँ,
0: बहुत सारे होते हैं विभक्ति चिन्ह इसमें अधिकरण कारक में। अच्छा, तो अगर ये संबोधन कारक किसे कहते हैं बताओ? संबोधन कारक
1: जिसे किसी को बुलाने का या फिर
0: जिसे किसी को बुलाने अथवा
1: सूचना देने के लिए
0: सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन

0: कहते हैं।
1: इसका विभक्ति चिन्ह क्या है बता सकती हो?
2: हे आ
1: अरे नहीं हे अरे हे। याद रखना देवी, इनका प्रयोग संज्ञा से पूर्व होता है, इनके बाद
0: संज्ञा के पहले इस्तेमाल किए जाते हैं।
1: हाँ, इनके बाद संबोधन चिन्ह भी लगते हैं, याद रखना, इनके बाद संबोधन चिन्ह भी लगते हैं।
0: दीदी कुछ उदाहरण
1: जैसे
0: बताएं।
1: अरे भैया क्यों रो रहे हो, हम अरे भैया के बाद संबोधन चिन्ह लगाते हैं।
0: अच्छा।
1: अरे विद्यार्थियों दिल लगाकर पढ़ो, हे गोपाल यहाँ आओ, हे मदन वह काम मत करो। तो इन वाक्यों में बताओ कौन से संबोधन कारक है? अरे भैया, हे गोपाल, हे गोपाल, अरे विद्यार्थियों, हे मदन संबोधन कारक है।
0: जी
1: समझी। अच्छा, तो विभक्ति चिन्हों से हम यह जान सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द कर्ता कारक में है या कर्म कारक में है या किसी और कारक में है। तो यह जानने के लिए किस कारक में कौन सी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है उसे याद रखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं तुम्हें और एक बार पूछूंगी, कर्ता में कौन सा विभक्ति चिन्ह।
3: सुनिले हिंदी शिक्षा कार्यक्रम आकाशवाणी संबलपुर। वर्तमान आरंभ करुचु जुबश्रोता मानंक पाई जुबवाणी कार्यक्रम।

0: ଆପଣରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଯୁବସାଥୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ପାଢ଼ୀ ନମସ୍କାର।
1: ଶୁଣିଲେ ଯୁବବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲେ କରି ପ୍ରସାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
2: ନମସ୍କାର, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि इस मंच के शुरू होने के बाद से अब तक 50 लाख से अधिक आव्रजन मंजूरियां जारी की जा चुकी हैं। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। करीब 4 दशक की सैन्य सेवा के दौरान जनरल द्विवेदी ने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत कार्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
2: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से शिक्षा को न्यायसंगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पख्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने पाकिस्तान से अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार 28 जून की रात को हुए इन हवाई हमलों में 36 लोगों की मौत हुई और 163 अन्य घायल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने।

0: होंगे। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी रे संवाद सुनिले रिले करी प्रसार कलु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्ररु आकाशवाणी संबलपुर वर्तमान सुनंतु संबलपुरी मुख्य संवाद।
2: आकाशवाणी संबलपुर मुख्य खबर संगे मुई कृतांजलि त्रिपाठी। विकसित भारतर लक्ष्य के पूरा करबार लागि चास जमीर उन्नति बहुत जरूरी है कहले केन्द्र कृषि मंत्री। भारत तरफ भेनजुएला भूकंप पीड़ितों लागि तुर्ति करागला मानविक सहायता काम। अफगानिस्तान उपरे पाकिस्तान रो आक्रमण के अंतर्जातीय समुदाय कले निंदा। ग्रीस आउ भारत भितरे आष्टानु मूल हला यूपीआई आधारित टंका दियानिया सेवा। पेट्रोल आउ डीजल बिक्री आउ बांटवागे नेकरी अस्थायी नियम रो पदक्षेप के उठे देले सरकार। देशर पांचटा राज्य ने आष्टानु मूल हेछि एसआईआर प्रक्रिया। रविधान ठोल करबार समिया के आयबा शुक्रवार तक पढ़ाले राज्य सरकार। दिल्ली गस्त अवसर केन्द्र आयुष राष्ट्रमंत्री को भेटिचन स्वास्थ्य मंत्री। ओडिशान गोटे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एआईआईए प्रतिष्ठा लगे आनुष्ठानिक भाव देचन प्रस्ताव। भुवनेश्वर शिशुमंगल समिति नवनिजुक्त सदस्यों लगे पांच दिनिया प्रशिक्षण कार्यक्रम शुभारंभ कले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। छुआ सुरक्षा विकास और अधिकार सुनिश्चित करार दिखे दायित्वबोध सहित काम करवारे देचन आह्वान। भारतीय स्थलसेना मुख्य भावे आज दायित्व नेले जनरल धीरज सेठ। पुरी श्रीमंदिर आष्टानु मूलेला महापुरुषमानकर अणसर गुप्त नीति। ब्रह्मगिरीर प्रभु अलारनाथकर पीठरे आष्टानु मूलेचे दर्शन। सामाजिक गणमाध्यमर गुरुत्व बाबदे लुक्कु जनाबार लक्ष्य नेकरी आज पालन कराउचे विश्व सामाजिक गणमाध्यम दिवस। आंध्रप्रदेश विजयनगरम जिल्लार भोगपुरम पीएमश्री आदर्श विद्यालय प्रदर्शन करिचन केन्द्र शिक्षामंत्री। एवं तीन तारीख अनुष्ठित होगा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित युक्त दुई इनस्टांट हाउस इम्प्रुवमेंट परीक्षा। कलाहांडी जिला कलाहांडी सांसद मालविका देवी अध्यक्षता अनुष्ठित हो जिला दिशा कमिटी बैठक। बौद्ध जिला मंडी पंचायत विद्यालय और रास्ता काम समीक्षा कर जिलापाल। और राज्य सक्रिय रही है दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु इतार प्रभाव ती भिन्न भिन्न जगान लगि रही है वर्षा। एजिन मुख्य खबर इनु शेष है इतार उत्तर मुख्य खबर शुनिपारे रात 8 बजे।
1: ଶୁଣିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନା।

0: सो पूरा जैसे आपने कहा इकोसिस्टम चेंज हुआ है, वो तब से हुआ है जब से बीसीसीआई आई, और जब से जयशा आए उन्होंने सबसे पहला काम किया कि इक्वल पे, आई थिंक दैट वाज अ ह्यूज मूव. तो उससे जो इंडियन क्रिकेटर्स को जो फायदा हुआ है उसका फायदा अब मिल रहा है.
1: Right, and just to take this point forward, we're talking of ecosystem over here. The whole spirit of the game, that the visuals that are coming out from the stadium right now, well, surprisingly, and the most beautiful thing is, हमारे सारे listeners के लिए हम आपको बताएं कि सिर्फ Australian support नहीं आया है, huge amount of West Indian support भी आज देखने को.

0: ओवर में तो बहुत ही
1: ओडियारे संवाद शुणिले रिले करि प्रसार कलु आकाशवाणी कटक केन्द्रु आकाशवाणी संबलपुर श्रोताबंधु आपण माने एफएम 101 मेगाहर्ज जोगे शुणुछन्ति लंडन रे होउथिबा महिला आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्वकप 2026 रो प्रथम सेमीफाइनल रो द्विभाषी ऑफ ट्यूब धारा विवरणी वर्तमान आपण माने मीडियम वेव 317.5 मीटर तथा 945 किलोहर्ट्ज जोगे मध्य एही धारा विवरणी सुनी पारिबे एवं आम परवर्ती कार्यक्रम गुडी को न्यूज ऑन एयर एप रे अविरत जारी रहिबो। वर्तमान आसंतु कंठशिल्पी पद्मिनी बैठारुंक कंठरे शुणिबा गोटिए संबलपुरी गीत। गीत रचना चित्तरंजन नायक।

0: Ibu Anani, juargo.
1: Ibu, लता के
0: होए
1: देख तो तोते देखले उडे कथा डे पचरामी बोलुथली
0: हां काना कह तो
1: सुन तो आज जो दुपहर जे नामर बाबू के पठेथिली उडे काम देथिला तो न बोल तो
0: हां हां आइथिला
1: जे होए बोले मैं कोली जाट के कह देबू तो मामसी के आबा बोली जे एमा तुम के परे मामसी कान काना भेटले कहबे बोली करी कहले आरो बैठकी गेले भेटघाटले कहबे बोलथिले जे कान कथा सेटा कहमी बोलथुलु
0: हां मई कहमी बोलथिली की जनता अमर आमे तो चासबास कला लोक हां और चासबास रो कथा तो तुमे जानु छ नानी
1: होए केते बेले लाभ होचे केते बेले नुकसान होचे
0: हां जो हो एंता नुकसान माने होचे जे कहि भी ना होए केते बेले रोग पोक लागे नुकसान हला केते बेले
1: मड्डी हला केते बेले बॉयड हला
0: बड़ी हला हंदा होचे
1: ना होचे तो ने जानु चुके हम तो चास कला लोक
0: बले हेतरे कहां नुकसान होचे चास कला लोक और अमर मान कर तो सब बेले फी बरस नुकसान हला बेल के पूरा नुकसान सहला तो हेथि लगी अमर प्रधानमंत्री गुटे योजना करी छ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना परे
1: हां हेटा तुम भी सुनि थली जे जह नै जाने कान कान कहतो टी
0: ई जे नाम नुकसान माने होछे सिथिर लागि आमे फसल रो बीमा करी पा हला
1: ओ जेंटा अमर जीवन के बीमा करसु हेंटा फसल रो भी बीमा आबा बोल
0: बेले से जे नाम क्षतिटा जेन हेइथबा नुकसानटा जेन हेइथबा सेटा बाबू माने आसी किना देखबे जांच करबे तार परे से माने हमकु नुकसान लागी जेंता हमर लगेथला जेंता हमर नुकसान लागी हमकु भरना देबे
1: ओ हो बले पहिला देखबे जे केते नुकसान हे छे से हिसाबे हिसाब किताब करी करी
0: हिसाब किताब करी के सेथि लागी काना करबार के पड़बा कि हमकु आघनु किछि जो असुविधार कथा नु हे आघनु हमर जेन पाखरी जेन हमर कृषि विभाग से न जाई के ना कथा लागे के ना निजर गुटे रजिस्ट्रेशन टे करे दबार कथा सब ब्लॉक स्तर थी भी तार माने इटा हे पार
1: बेले
0: कृषि अधिकारी कार्यालय जन अछे से जाय के ना और नहले हमर इजन जनसेवा केंद्र माने अछे सेनो भी बुझले से माने भी बते देबे
1: हां बेले ई चास करबार आघनु आमे हमर फसल के बीमा करे देबार कथा बो
0: चास करबार आघनु बीमा करे दमा तार परे जाय भी नुकसान हबा जनता भी नुकसान हबा परे सबुथिर हमको भरना मिलबा
1: हां एटा तो बढ़िया कथा है नले तो चासीर पूरा मेरुदंड और हाड़ भांगी जीवा नहीं के जब की मेहनत करी थी वो यदि नहीं पाइलु किछि बोले बात तो
0: हां हां
1: के केनु पैसा आनी करी करी छे चासटे के केनु उधार बाट करी के सुझमी बोले भाबी थीबा
0: आरो लागि मे भाबु थी कि एटा बैठकी थी आसले सबको कहमी आर बैठकी थी बढ़िया कथा टे आए के
1: होय होय
0: सभे गुटे साहस पाइबे कथा सुनबा लागि आमोर लागि भी चासी घर लागि भी के गुटे साहस देबार लागि अछन आमोर प्रधानमंत्री योजना माने बाहर करी छन सेतिले इटा गुटे खुशीर कथा है
1: सुन तो ई सब जे योजना माने होची आमोर भल लागि होची आमोर लाभ लागि होची आमोर खाली कारण की सेटा के जानी करी बुझी करी हेते शामिल ही करी नहीं के तार फायदा टा हमें उठाबार कथा आमोर लागि होचे रो हमें जदी तुन पड़ी दमा बले हेबा के अरे आमोर सेतिरे फायदा एका होची
0: कथा सरकार बहुत किछि करूचन योजना माने आनु छन आमे से जिनिस माने जानी करी तार लाभ माने केनते पामा से आड़ के आमे जिबार कथा
1: इटा तो मने कथा कहलु आरो जेन चासी भाई माने भी टिके जदी हेलुआ हे दुतबे ने गें तोर कथा सुनिकरी तरकीबे आरो निश्चय जाइकरी करबे का टिए तहक भी पाएबे सुन तो एटा तो कथा वार्ता में होत मा आज का काई दिन कहतो काई दिन आज त हमर चासी भाई मान कर कथा वार्ता संगे तांगर कथा वार्ता हबार दिने बोले कथा वार्ता टिके सुनता के बोलचे हमर केन चासी भाई काणा करिचन केनता करिचन चल सुनु
0: हेटा सुनबार लागी तो आमे इंडिया आए सुनानी ताना सुनले केनता है
1: हां हेटा सुनले टिके तहक लागसी
0: सीखी हेसी किते कथा जानी हेसी
1: होय
0: आर दोम लागसी
1: होय बले सुनमा के बोलचे
0: होय होय
1: बोल चल सुनु हन ताले
0: चलो चलो
2: अमर चासी भाई बहन माने तो भिन भिन रकमर चास करी थी सब

0: ସେ ଠିକ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରଖିଦେବା, ଧାନ ସେ ସାର ଖାଇପାରିବା
1: ଅମିଲତା ଭାଗ ବେଲେ ଖତ ସାର ଦେଇକରି ଆମର ଗଛଟାକେ ଠିକ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖବାକେ ହେସି।
0: थोड़ा बेले जिंदा थोड़ा भावुचे लास्ट गर्भ ही सुने लो से सारटा मुख्यतः से सार जी देवाटे जेन चासी जी नै जानबा धान कमी जेबा कहले तार आगरु जी देले गस खाइ देसी खेरटा छोड़ जेबा आ पछे देले खेर बड़ हेबा किंतु गसटा पोल ही जेबा खेर माने माने दाना पोल ही जेबा आउ केते देवा कथा माने क्वांटिटी
1: परिमाण
0: परिमाण ठीक जानबा कथा कहले यूरिया रे जदी परिमाण हतकेले बेसी होला जदी ग्रीनिश होला सेतकेले गुरस से खाई
1: नै
0: पारे से चासी रो जमी कोबा जे केते यूरिया दरकार आ मुख्यत पोटास सार सेतकी बोला दवाटा केनसी चासी नै भूलबो कहले पहला आ लास्ट थोड़ो सार पोटास दवाटा बाध्य
1: बेले आगे एटा तो खत सार देले आपनकर केनते करी पिल भल धरबा आ दानाटा बने हेबा से उपरे कहले हेले धान फसल नो रोग पोक गले लागी थीसन आउ फसल के नुकसान करी थीसन रोग पोक नाइ लागबार लागी काणा आगुआ प्रतिकार करसन।
0: ठीक कथा रे कहले अमर तो जितेले बेहन धान दा आउना होचे पहला पोला पकावार आगरु कि मा धान बुनवार आगरु सूर्य किरण रे सुखावा कथा एक रे सिरा मॉइश्चर कमी जाउचे आ जेन केते पोक थीसन फंगिसाइड्स केते थिबे किछि परिमाण सेति कमी जाउछन
1: सूर्य किरण
0: ता पर मु आगरु कहिथिली जे बायबिस्टिन किमा थिरम देखली ताके विशोधन करवा कथा सेतिरे बहुत कमी जासन 50% कमी जासन तार पर हमर क्लाइमेट पागो पागो ऊपर रहला मले सेतकी बेले आमे यदि कांडबिना पुको लागले कि कांडबिना पुको लागबार जणा गला मले आमे खाली कांडबिना पुको दबा कथा निजर शत्रु नहि आमे निजर मित्र मित्र पोक ताकु नै मारा कथा जिंदा कि फिर फिरी हैला आमर किंचुआ हैला आमर मुकल्ला हैला है इमाने सब रहबा कथा आमे से सैपरमेथाइन डेल्टा मेथाइन मारिकिरी इ सब पोक आमे नै मारा कथा सापर रहबा कथा सापर रहले आमे मुसा खाउ जों हैला बले इ सब जिन जामे जिन प्राकृतिक भगवान बने दिजे है शिव परिवार ऊपर जिंदा शिव परिवार रे शिव रहुचे सणबलद रहुचे गाय रहुचे सांप रहुचे मयूर रहुचे सबे सबको दमन करबाले मतलब सब गणेश बाहन मूसा रहुचे ई सब रहले जिंदा चल जे हमर परिवेश भी सेंदा जिनिस रहला कथा खाली आमे मेडिसिन रे गुड जिनिस कंट्रोल करमा तबे संभव नहि
1: बले अपन जैविक पद्धति रे करसन नेता माने तार नहीं है बाल लगे किसी प्रतिकार कर सम कि खाली रासायनिक पद्धति ले
0: बिग पद्धति को ले मैंने कंट्रोल ही नहीं पाया कहने आमे पांच करोड़ बुढ़ी आती को ले भावना जन रही हुई जिसमें रासायनिक पद्धति कर जो जिसमें तो फिर फिर सांप बैंक सो उमर दे
1: मारे दो
0: अमर जैविक पद्धति या के ना रुकाम दवा आमे जिधि गुटे गांव की गुटे पंचायत जिधि आमे टोटल जैविक पद्धति समझते को ले आमे आके अग्रणी हेतु आमको खर्चा में किया बाकी नहीं पड़ता
1: बेले पोग जोग भी आयत करी
0: आयत करी हेता
1: बढ़िया कथा एटा ए जन धानटा हेला बोली करी केंता करी जानबे ओ अमल केंता करी करबे
0: जते बेले धान गुरस खाई होई छे आउ 80% धान पाची होई छे बेले आधा सागवा थसी टिके टिके टिके टिके सागवा थसी आ हरजाई दिसी सेटा अमल करबा टकुत समय आगरु हेले कणा से के गुरसटा सुखी जासी आ पछे हेले आ तर क्वालिटी छोड़ी जासी आ धान आधा झड़ी जासी आ उजन रे भी कमी जासी बेले जितकी दुनिया धान है सौ कोड़ी दिनिया धान सौ कोड़ी दिने अमल कर देवा कथा आउ अच्छी तो लेबर प्रॉब्लम है मु तो हार्वेस्टर नहीं लोग हैं कहते ले लेबर रे करसी लेबर रे करवा माने कुड़ेटा फैमिली सेती चलु छन आउ सेते जन क्वालिटी रे धान दा बारवा हार्वेस्टर रे बाहरी नहीं पारे
1: भूतियार लगे करी करबाटा बेसी भल
0: बेसी
1: नहीं का बेले आगे आइटा तो गला धान कथा आपन सुरसो मूक बादाम एंदा सब भी करो चुंबेले
0: हां
1: बेले इथि रूपरे टिके कहुन केनता करी कर
0: सुन सुरसो मूगो हमको तो गवर्नमेंट दोई छि किछि किछि करवाल ले आ हमें समस्त सुरसो मूगो बादाम टी रे करा कथा कहतले घरे खावाल ले हमर जन तेल ला किनु छु सेटा ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है कि कहना जे हमें जानने पावार जेने कि हमें जदि सुरसो डी करमा कि बादाम डी करमा कि आलू डी करमा हमको किनवार कॉस्ट कमी जबा निजर शारीरिक परिश्रम रे भल जिनिस हमें खाई पारमा आ सेति लगे मैं साग सब्जी नु सब टिके टिके करसी
1: माने
0: घरे खाइबा ले सब मैं निजे करसी जेने कि मेडिसिन नै लागे
1: हां धानटा तो बिक्री करसु बोले सुरसो मूग बादाम ई सब बिक्री करसन कि सुरसो
0: खाली खाइबा ले
1: खाली
0: खाइबा ले
1: बेले सुरसो नु तेल तुला पिडासन
0: तेल पिडासन आसे पिडवा के बिकी देसु
1: हां
0: अमर जन गाई वाली ने सुन सुन ताकर पिडवा कर वाली पैसा किछि बाहरी पड़सी
1: बेले मोटा मोटी केते एकर सब

धागिटा ताक धागिटा ताक धा त्रिगण के धागिटा ताक धा त्रिगण के धागिटा ताक धा त्रिगण के धागिटा ताक धा त्रिगण के धागिटा ताक धा त्रिगण के धागिटा ताक धा त्रिगण के धागिटा ताक धा त्रिगण के धागिटा ताक धा त्रिगण के धागिटा ताक धा त्रिगण के धागिटा ताक धा त्रिगण के धागिटा ताक धा त्रिगण के धागिटा ताक धा त्रिगण के धागिटा ताक धा त्रिगण के धागिटा ताक धा त्रिगण के धागिटा ताक धा त्रिगण के धागिटा ताक धा त्रिगण के धागिटा ताक धा त्रिगण के धागिटा ताक धा त्रिगण के धागिटा ताक धा त्रिगण के धागिटा ताक धा त्रिगण के धागिटा ताक धा त्रिगण के धागिटा ताक धा त्र

0: আকাশবাণী সম্বলপুর বর্তমান হিন্দি রে সম্বাদ এবং পরে পরে ইংরাজী রে সম্বাদ শুনন্তু রিলে করি প্রসার করুছু আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্ররু।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू।

0: मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
2: One key pillar which has brought about a transformation.
3: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान

0: बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
1: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
5: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन

0: संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living. Also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch 3 projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today interacted with various secretaries to several ministries at Seva Tirth in New Delhi. The discussion focused on 2 key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting

0: ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲେ କରି ପ୍ରସାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजेशकियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजेशकियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज

0: निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साढ़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी रे संवाद सुनिले रिले करी प्रसार कलु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्ररु आकाशवाणी संबलपुर वर्तमान सुनंतु संबलपुरी मुख्य संवाद।
3: आकाशवाणी संबलपुर मुख्य खबर संगे मुई भारत गौरव दास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा तीर्थटने केन्द्रीय मंत्रालय सचिव मान सहित करिछन गुटे उच्चस्तरीय बैठक। आइबा काल ठानु लागू हुआ भिबिजि रामजी ग्रामीण आईन 2025 चलती आर्थिक बछरे ई योजना लागि खर्च हवा 95,692 कोटी टंका। भारतीय स्थलसेना मुख्य भावे आज दायित्व नेले जनरल धीरज सेठ। राइजे डालुआ धान घिना समय के आइबा शुक्रवार तक बढ़ाई बोली कहले खाद्य जोगाण आउ खाउटी कल्याण मंत्री। यह तक 18,79,000 मेट्रिक टन धान घिना सरी। नुआकर निजुक्ति पाइथिबा शिशु मंगल समिति सीडब्ल्यूसी रा अध्यक्ष आउ सदस्य मानकर 5 दिनिया प्रशिक्षण कार्यक्रम के आज उद्घाटन कले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। राइजे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान प्रतिष्ठा लागि केन्द्र आयुष राष्ट्रमंत्री को प्रस्ताव देले स्वास्थ्यमंत्री। प्रतिरक्षा क्षमतार भित्तिभूमि के बरकस करवा लागि गोटे सशक्त अर्थव्यवस्थार भूमिका अछि बोली कहले प्रतिरक्षा मंत्री। एप्लेट ट्रिब्युनाल थी आएबा 31 तारीख तक द्रव्य आउ सेवाकर आईन अधीन थी अपील करिपारे दाखल। युक्त 2 इनस्टांट आउ इम्प्रुभमेंट परीक्षा आएबा 3 तारीख दिन हवा बोली परिषद तरफ सूचना। बौद्ध जिलार विकासमूलक काम मानके अयत्का गतिशील करवा लागि भिन्न भिन्न सरकारी प्रकल्प आउ अनुष्ठान क्षेत्र परिदर्शन कले जिलापाल। देशे पहला थर लागि मध्यप्रदेश 12 उद्यान फसल के मिलला जीआई टैग। हुल दिवस अवसर में श्रद्धांजलि जनाले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। पुरी रथयात्रा सुपरिचालन लगे 23 जन अधिकारी को मिलला दायित्व। साधारण प्रशासन आउ साधारण अभियोग विभाग तरफ जारी है विज्ञप्ति। आउ मौसुमी प्रभाव थी राज्य भिन्न भिन्न जगान हो वर्षा। आज मुख्य खबर शेष है। जुहार
2: सुनिले संबलपुरी मुख्य संवाद आकाशवाणी संबलपुर। बर्तमान सुनंतु आगामी काली आम केन्द्ररु प्रसारित होबाकु थिबा कार्यक्रम संपर्कीय सूचना। सकाळ 6:30 रे आजिरो भावना उपस्थापना शिवानी लाल। 7:10 रे स्वास्थ्य सूचना साप कामुड़िले कौन करिबे एई विषय कहिबे डाक्टर लक्ष्मीकांत दास। 7:30 रे परिवेश पाई विपद जंगल अवक्षय विषय कहिबे डॉक्टर समापिका दास। 7:35 रे